0: गोर्खा जिल्लाकै विश्वासिलो सुन चाँदी पसल
1: नारायण सुन चाँदी पसल बैंक रोड बस पार्क गोर्खा। फोन नम्बर 064-20-670, मोबाइल नम्बर 98460।

0: Italy.
1: Nang sikaw. Mera number. Directly baat karna. Dad ko involve karne ki zarurat nahi hai, okay? वैसे भी नंबर मिल गया तो डेस्पो की तरह बिहेव मत करना. आई कैरी पेपर स्प्रे.
0: ओके.
1: बाय द वे नेहा,

जदों मर्जी पूरी कर लवे वो ख्वाहिश नहीं तेरी, जदों मर्जी पूरी कर लवे वो ख्वाहिश नहीं तेरी। एक गल तू पल्ले बन जाने, ये पल्ले बन मेरी, वो होर होणगे जिन्हां नूं तू पैरां विच रखदा। मैं प्यार हां तेरा, तवायफ नहीं तेरी।

0: तो कब करेगी शादी?
1: मेरी दादी बोलती है तेरी शादी कभी नहीं होगी।
2: क्यों?
1: दादी बोलती है तो दुनिया में सबसे अलग है।
0: तेरी दादी और दुनिया को

अगर उससे बातें करनी है तो फिर नजर झुका के करें, तो फिर नजर झुका के करें।

ना दुनिया के लिए लिखते ना मेरे लिए लिखते, ना दुनिया के लिए लिखते ना मेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते हैं।